0: दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
2: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती का योग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 3,79,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट पर करार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया

0: हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूर संचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूर संचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानकथ ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाटी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।

0: पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ते ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है, गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है सिर्फ तेज रफ्तार नहीं, हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। लोकसभा पासेस एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल विथ स्ट्रिक्टर पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 इयर्स इन जेल। पोलिंग बिगिंस फॉर बाय इलेक्शंस टू 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। Bihar government decides to reopen closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. India's merchandise exports rise 15% despite Red Sea crisis and global turmoil. Annual Kanwad Yatra for Shravana month to begin today. And para-athlete Dilip Kavit wins gold while Mohammed Basil bags silver in men's 100-meter race at Commonwealth Games. The Lok Sabha has passed the Anti-Paper Leak Bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
3: The earlier bill and the amendment are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
2: Polling has begun for by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Voting is taking place for Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh. In Bihar, voting is underway for the by-election to the Bangladesh

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियाँ लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
3: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
2: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जानिए श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत रही। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
2: आज हम बात करेंगे भारत के उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद।
3: श्रोताओ आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
2: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
3: श्रोताओ उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
2: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
3: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय ICS परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठ परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
2: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
3: बहुत विचार विमर्श है कि महान व्यक्तित्व केवल सफलता से ही नहीं बल्कि अपने आदर्शों के प्रति अटल रहने से बनते हैं।
2: जी
3: श्रोताओ आज के प्रसंग में आपने

0: शासनकाल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको बताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
1: श्रोताओ, आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम। शीर्षक है पहली बूंद।
0: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह धरती पर आनंद और उल्लास का वातावरण रच जाता है और लोगों को बहुत राहत मिलती है।

0: अली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
1: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
0: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पहली बूंद। जरा सोचिए मित्रों, क्या होता यदि हम बीमारियों और संक्रमणों का इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं,

0: देखे हैं आपने?
1: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
0: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
1: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
2: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
3: चलो,
4: अरे भेड़िया,
2: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
5: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
3: चलो चलो चलो
6: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
3: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
2: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
5: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
2: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
5: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
2: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
5: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
2: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
7: लुई पाश्चर
8: सर,
7: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
8: कहिए सर।
7: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
8: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
7: ठीक है।
5: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने

0: उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा आज, ए, ए,
3: हाँ
2: इंजेक्शन लगा दूं?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर ये टेलीग्राम।
3: अच्छा लाओ दिखाओ।
5: अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
5: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
5: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
5: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
6: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद की

0: दीजिए।
1: लेकिन लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
0: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
1: देखिए आप,
0: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
1: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ अब
0: मेरा अच्छा, बेटा।
1: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा। हाँ
2: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
2: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बबच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
2: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
2: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
4: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
5: ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত অনুষ্ঠান উমংগ শুনিলে।
6: আৰ্থিক পৰিকল্পনা হ'ব আৰু অধিক স্মাৰ্ট।
7: অধিক তথ্যৰ বাবে আপোনাৰ কাষৰ মুন্নাপুৰম ফাইনেন্স শাখালৈ যাওক অথবা কল কৰক টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1-800-420-2233 নম্বৰত।
5: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু খন্তেক পাছতে আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
8: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী, বাতৰিৰ সৈতে মই পৰিস্মিতা দিহিঙীয়া। ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি পূৰ্বতকৈ উন্নত হৈছে যদিও 7খন জিলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়াও বানত বুৰ গৈ আছে। শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, চৰাইদেউ, শোণিতপুৰ, যোৰহাট, নগাঁও আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বহু অঞ্চল এতিয়াও প্লাবিত হৈ আছে। কালি শিৱসাগৰ জিলাত 2 আৰু গোলাঘাট জিলাত 1 লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছত সাম্প্ৰতিক বানত

মা আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই বৰষা কলিতা। নিবেদন কৰা হৈছে পৰাগ মালা, আগবঢ়াইছে ত্ৰিনেইনী মালাকাৰে। नमस्कार श्रोतागण, आप सुन रहे हैं मधुर गीतों का मनभावन सफर परागमाला लाइव और मैं आपकी प्रस्तुतकर्ता त्रिनेनी मालाकर। संगीत को ईश्वर का वरदान कहा जाता है और जब संगीत के साथ भक्ति सुर और भाव जुड़ जाए तो वह यशुदास बन जाता है। डॉक्टर के जे यशुदास भारतीय संगीत जगत के ऐसे सुर सम्राट हैं जिन्होंने अपनी आवाज से करोड़ों दिलों को छुआ है। उन्हें गाना गंधर्व के नाम से भी जाना जाता है।

0: विशेषज्ञ देखभाल और संवेदनशील सेवा का हकदार है। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी RRIH में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत होम्योपैथिक परामर्श एवं समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। कुछ विशेष रोग स्थितियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श एवं मार्गदर्शन भी उपलब्ध है। चयनित रोगों से पीड़ित पात्र मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ एवं प्रयोगशाला जाँच सेवाओं का लाभ भी मिल सकता है। सरकारी संस्थान में विश्वसनीय और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाइए।
1: RRIH भेटापाड़ा गुवाहाटी।
2: यशुदास जी का पूरा नाम कट्टीसैरी जोसेफ यशुदास है। उनका जन्म 10 जनवरी 1940 कोची केरला में हुआ। उनके पिता का नाम स्वर्गीय ऑगस्टीन जोसेफ है, जो कि एक प्रसिद्ध मलयालम संगीतकार रहे, एवं उनके गुरु का नाम चेम्बई वैद्यनाथ भगवतारा और स्वामी बलमनी है।

0: अपने स्वास्थ्य के लिए उठाए सही कदम। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी RRIH में गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथिक परामर्श, रोगी केंद्रित देखभाल तथा कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा विशेष परामर्श सेवाएं उपलब्ध है। चयनित मरीज प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क दवाई एवं प्रयोगशाला जाँच सेवाएं। आइए और एक विश्वसनीय सरकारी संस्थान में किफायती और सहयोगात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का अनुभव करें।
1: RRIH भेटापारा गुवाहाटी।
0: यह संदेश जनहित में जारी।
2: ऐसा माना जाता है कि सुदास जी ने करीब 5 साल की उम्र से ही संगीत सीखना शुरू किया था। उन्होंने कर्नाटिक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत और वेस्टर्न संगीत तीनों में महारत हासिल की। यशोदास जी ने 1961 में अपना पहला फिल्म गाना मलयालम फिल्म कल्पडुकल के लिए गाया। उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

यशुदास जी ने 50,000 से भी ज़्यादा गाने कई भाषाओं में गाए, जैसे मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, ओड़िया आदि। ऐसा माना जाता है कि यशुदास जी को संगीत विरासत में मिली। उन्होंने त्रिवेंद्रम की स्वाति तिरुनाल संगीत अकादमी में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। मात्र 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला स्टेज प्रोग्राम किया और तभी यह तय हो गया था कि एक दिन ये आवाज़ इतिहास रचेगी।

कीजिए यसुदास, सिर्फ एक गायक नहीं, एक युग है। उनके आवाज में भक्ति है, प्रेम है, शांति एवं भारत की एकता है।

0: जब इस उदास गाते हैं रात के सन्नाटे में, दर्द भी मरहम बन जाता है बातों बातों में। उनके आवाज नहीं ये तो दुआ है जो उतरती है सीधे रूह के खातों में। इसी के साथ होता है अंत कार्यक्रम परागमाला लाइव।
1: परागमाला
2: পৰাগমালা শুনিলে, আগবঢ়ালে ত্ৰিনেণী মালাকাৰে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। আগবঢ়াইছো আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা।
3: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু, আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা।

0: 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। राज्यसभा आज लोक परीक्षा अनुसंधान रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा करेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
1: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूँ कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकेपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 11 बजे तक पटना के बांकेपुर विधानसभा सीट पर 11.5%, गुजरात की मंजलपुर सीट पर 14.27% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32.53% मतदान की खबर है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लट्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी गुवाहाटी দুপৰীয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰিৰ সৈতে মই অৰুণিমা গোস্বামী। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল নীটৰ বিষয়ক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যসকলে সৃষ্টি কৰা হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি লোকসভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা দিনৰ 2 বজালৈ স্থগিত। ডিমাহাসাও জিলাত ইংৰাজীৰ সমান্তৰালভাৱে ডিমাছাক চৰকাৰী ভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। চিৰাং জিলাৰ গোৱালবাৰীত আজি সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী দিৱস পালন আৰু কমনৱেলথ গেমছৰ 100 মিটাৰ দৌৰত সোণ আৰু ৰূপৰ পদক জয় কৰা পেৰা এথলীট দিলীপ গাৱিত আৰু মহম্মদ বাছিলক ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যসকলে সৃষ্টি কৰা হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি লোকসভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা দিনৰ 2 বজালৈ স্থগিত ৰখা হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে দিনৰ 11 বজাত সদন মিলিত হোৱাৰ সময়ত অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই গ্লাছগোত অনুষ্ঠিত কমনৱেলথ গেমছত পুৰুষৰ 100 মিটাৰ দৌৰত সোণৰ পদক জয় কৰা পেৰা এথলীট দিলীপ মাহাদু গাৱিত আৰু ৰূপৰ পদক জয় কৰা মহম্মদ বাছিল মৰসিংগানা কাথিক অভিনন্দন জনায়। শ্ৰীবিৰলাই দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে খেলুৱৈ দুগৰাকী আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষকক সদনৰ সকলো সদস্যৰ হৈ শুভেচ্ছা

0: আইদেউৰ বোলনি অনুষ্ঠানটি শুনিলে।
1: আলাপ অনুৰাগ আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু শাখাত এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি শনিবাৰে নিশা 9:30 বজাত প্ৰচাৰ হৈ আছে আলাপ অনুৰাগ। অসমৰ বৰেণ্য শিল্পীসকলৰ কৰ্মজীৱনৰ আধাৰত ৰচিত এই ধাৰাবাহিক প্ৰামাণ্য অলেখ্যালানীৰ ৰচনা আৰু প্ৰযোজনা অজয় কুমাৰ বৰাৰ।
0: অসমৰ ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত নৱজাগৰণ আনিব বিচৰা, ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগত নিয়োগৰ বাবে দক্ষতা অৰ্জনৰ হেতু গুৱাহাটীৰ অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান আৰু বাইহাটা চাৰিআলিৰ কামৰূপ পলিটেকনিকত চলিত বছৰৰ পৰা 3 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হ'ব। ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিং, ছেমিকণ্ডাক্টৰ মেনুফেকচাৰিং এণ্ড স্মাৰ্ট অট'মেশ্যন নামৰ এই পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ আবেদনৰ সবিশেষ আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটৰ ৱেবছাইট www.aei.ac.inত উপলব্ধ। আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 31 জুলাই। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। খন্তেক পাছতে 1 বজাত হিন্দীত আৰু 1:05 মিনিটত ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
2: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই কনকলতা। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकें। लोकसभा ने कल यह विधेयक पारित कर दिया है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
3: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
2: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय

0: परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस मामले में 7 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच ईरान के खुजस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। उधर भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में अमेरिका से 1-2 से हार गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोप्राइटरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई वट एवर नेम इट मे बी कॉल्ड विच इज एंगेज बाई द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
0: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक

0: के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
1: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, ये ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
2: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए। साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
4: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भिखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
5: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के

0: पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
2: आपने इस अभियान से, मैं कह सकता हूँ कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी कि हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने यह सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
3: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, इससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
5: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
6: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज चिल्डमरू मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमेरिकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों

0: का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेभर 411.5 मीटर 729 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज ए आकाशवाणी गुवाहाटीर महाबाहु निवेदन करा हुई से पाश्चात्य संगीतर अनुष्ठान।

0: कारबी मोतीची कमरीती।
1: लक्य आकाशवाणी कहती महाबहो लुन भरे मांगडेंग लोंग पेन अदुंथु कबान रोंग फरपी के लुन अलुन अलुन लके बोंग ओय अलुन तांगते आर्जिक सेनांग लुन भरे मांगडेंग लोंग पेन कबान रोंग फरपी के लुन लबांसु अलुन भरे।

खुलुमबाय बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दिनैनि बर' रादाबखौ फरायदों आं खगेन बर'आ आसामनि दै बानायनाय थासारिया आगोलनि रुजुनायाव एसे मोजां फारसे फैदोंब्लाबो दासिमबो मोनस्नि जिल्लानि गोबां ओनसोलानो दै बानायाव गोदोनानै दङ शिवसागर गलाघाट सरायदेव शनितपुर जरहाट नगाव आरो कामरूप नोगोरमा जिल्लानि गोबां ओनसोला दासिमबो दैजों लोमसावनानै दङ मैया शिवसागर जिल्लायाव सानै आरो गलाघाट जिल्लायाव सासे सुबुंनि गोथै सह मोननायनि उनाव दासिम दैबानाजों जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया सा स्निजिदाइनसिम बांबाय राज्य बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्या मैया लोकभवनाव खुंनाय मोनसे जथुमायाव गोबांसिन खहा जानाय शिवसागर सरायदेव जरहाट आरो गलाघाट जिल्लाखौ लाफानानै रायजोनि दैबानानि थासारिखौ सावरायलायो जथुमायाव खाजोना आरो आफद सामलायनाय बिफाननि उफेरा गाहाय सचिव एल स्विटि सांसिना बावैसोनि दैबानानि थासारिनि फारसे गुवारै मिन्थिहोयो ओरैहाय पंचायत आरो गामि जौगासार बिफाननि साजिबियारि मोनसे थान्दै हान्जाया दिनै खरसा आसामनि दैबानाजों नाख्रेबजानाय गंब्रै जिल्लाखौ दावबायनानै गासै खहाफोरखौ खाथिनिफ्राय मिन्थिनानै लायो बे हान्जाया बै जिल्लाफोराव एम जि एनरेगानि मोनगिरिफोरनि थाखाय भि बि जि रामजि मावबिथांखि मावफुंनायजों लोगोसे फिन गायसननायनि बायदि बिथिंफोरखौ नायजिरगोन होननानै मन्थ्रि अतुल बरया मैया आसाम आयेन आफादनि जोबथा सानाव संसदाव फोसावो मिरुआरि सरकारनि सादब मावखगिरिजों दाजानाय इसिं मन्थ्रि बिफाननि हान्जाया रायजोआव दैबानाजों जानाय खहाखौ सुमोन्थाय खालामखांबाय दैबानाजों गोबांसिन खहा जानाय सरायदेव शिवसागर जरहाट आरो गलाघाट जिल्लानि नायदिंनायनि उनाव मैया हान्जाया रायजोनि गाहाय सचिव डॉ रवि कटाजों मोनसे सावरायमा जथुमायाव जिरायो बे जथुमायाव रायजोनि गुबुन गुबुन बिफाननि गागि मावख'गिरि मिरुआरि थान्दै हान्जा आरो थिखानाय जिल्लानि जिल्ला खुंगिरिनि थान्दैया बाहागो लायो बे जथुमायाव रायजोनि मावख'गिरि बिथांमोना मिरुआरि हान्जाना दैबानानि जाहोन आरो खहा जानायनि खारि आरो रायजो सरकारा आखाइयाव लानाय हेफाजाबारि राहा आरो गायसनफिननाय राहानि जेंनाफोरनि बागै मिन्थिहोयो खरसा आसामनि जिल्लाफोराव दैबानाजों जानाय खहा जेंनाफोरनि बागै सावरायनाया सोलिगासिनो आरो दैबानानि बागै जोबथा फोरमायथिखौ थाबैनो मिरु सरकारनो गथायनाय जागोन होन्ना बिथांमोनहा बुङो इसि मन्थ्रि बिफाननि हान्जाया खालामनाय दैबानानि सुमोन्थायखौ नायबिजिरनायनि थाखाय मिरु सरकारनो गथायगोन होन्ना बिथांमोनहा खोथाहोयो शिवसागर जिल्लानि दैबानानि थासारिखौ नोजोर होनानै फरायसालिफोरनि गुदुं बन्दखौ फैगौ जि आगस्ट'सिम बांहोनो थाखाय फरायसालि नायगिरिया गेजेरारि आरो गुदि सोलोंथाय नेहाथारिखौनिसिम लाइजाम दैथायहरदों लाइजामाव जिल्लायाव खमैबो गं 500 फरायसालि दैबानाजों खहा जानाय आरो खमैबो 70,000 सोलोंसाफोरा गोहोम गोलैनायनि बागै मुंख'नाय दङ बेबायदि थासारियाव फिन फरायसालिखौ जागायोब्ला सोलोंसाफोरा जेंना सैनांगोन होन्ना फरायसालि नायदिंगिरिया फोसावदों भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना फैगौ 3-4 सानसिम रायजोनि दाब दाब जायगायाव गोब्राब अखा हागोननि सिगांग्रो मोन्थिहोनाय होदों बोथोर बिगियान बिफाननि खारि बायदियै दिनैनिफ्राय 1 आगस्ट'सिम आसाम नागालेन्ड आरो अरुणाचल प्रदेशनि जायगा लानानै जायगा अखा खोरोमनायजों लोगोसे गोब्राब अखा हानायनि सम्भावना दङ नसुंसेयारि नागालेन्ड आरो अरुणाचल प्रदेशआव गोब्राब अखा हानायनि जाउनाव धेमाजि लखिमपुर सरायदेव शिवसागर जरहाट आरो गलाघाट जिल्लानि गाज्रियै गोलोम गोलैनो हागौ होननानै बोथोर बिगियान बिफाना मोन्थिहोदों आसाम आयेन आफादनि बैहैथि बोसोरनि रांबावजा जथुमा मैया थुंगियो बे खेबनि जथुमायाव सानजिब्रैनि थाखाय मावफारि खुंनाय जायो दैबानानि थासारिनि थाखाय जथुमानि समायखौ साननै खमायना होनाय जायो 6 जुलाइ खालाराव जागायनाय बे जथुमायाव बैहैथि रांखान्थियारि बोसोरनि रांबावजानि अनगायैबो गांनै गोदान आरो गांजिब्रै सोदांनाय बिलजों लोगोसे गांजिबा बिल गनायथि होनाय जायो बिटिसि आयेन आफादनि रांबावजा जथुमाया साननैनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय क'क्राझाराव जागायो रांखान्थियारि बिफाननि बिबानाव थानाय बिटिसिनि गाहाय आरो गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया 2026 आरो 27 रांखान्थियारि बोसोरनि थाखाय 900 कौटि रांनि रांबावजा दैखाङो महिलारि बिथाङा बिटिसिनि गावनि फुंखानिफ्राय 71 कौटि रां 84 लाख रांनि खंख्ला रां बावजा दैखाङो बैहैथि रांखान्थियारि बोसोराव गासै 91 कौटि 31 लाख रां मुनाम्फानि उल्थायै 162 कौटि 85 लाख रां खरसा खालामनो थांखि लानाय जादों मैया सोंथिफिन आयदायाव सोलोंथाय बिफाननि बिबानाव थानाय मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारीया बड'फा सुपार 50आव इउएन ब्रह्म बेसेन नाङै UPSC, APSC, NEET आरो JEE कचिं मावफारियाव फिन मुं थिसननायनि बागै फोसावो कमनवेल्थ गेम्सआव भारतआ पेरा एथलेटिक्सनि हौवाफोरनि 100 मिटार खारनायाव T47नि दालायाव फाइनेलाव सना आरो रुफानि मेडेल देरहानानै जारिमिन रनसायबाय भारतनि दिलीप महादु गावितआ 0.71

सेकेन्डआव खारनानै फोजोबनानै सनानि आरो महम्मद बासिला 0.83 सेकेन्डआव खारनायखौ फोजोबनानै रुफानि मेडेल देरहानो हायो। भारतआ दासिम मोनथाम सना, मोनगु रुफानि आरो मोनथाम ब्रन्जनि मेडेलनि देरहाना गासै मोनजिबा मेडेलजों फारिलाइनि दाइनथि जायगायाव दङ। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बर' रादाबा एसेनोसै।

खुलुमबाय बे आकाशवाणी गुवाहाटी नोंथांमोना आयदाखौ खोनानो मोन्दों मुवाबा हुदालायनिफ्राय गिबियावनो दुलालाय खोनासंग्रिफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनैनि बर' आफादखौ बेखेवनाय जाबाय आफादखौ फोसावनाय जादों आकाशवाणी गुवाहाटी मुवाबा हुदालायनि मिडिया मोननि 401.5 मिटाराव आरो FMB नि 101.6 मेगाहार्सआव बे फोसावनायखौ नोंथांमोना आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्स आरो आकाशवाणी धुबुरीनि 103.3 मेगाहार्सआव रिले खालामनानै फोसावनायखौ खोनानगासिनो दं लोगोसे निउज अन AIR मबाइल एप आरो AIR रेडिय' मबाइल एपनि जोहैबो नोंथांमोना बे फोसावनायखौ खोनानगासिनो दं दिनै स्टुडिय' दं आं सन्जीब बर'आ आंजों लोगोसे स्टुडिय' दंफायो हगेन बर'आ दान्दिसे उनाव नोंथांमोना जोंनि उननि हाबाफारिखौ खोनानो मोनगोन बे आकाशवाणी गुवाहाटी मुवाबा हुदालाय दायो फसंलादों साख्रिनि रादाब आसाम पावर जेनेरेशन कर्परेशन लिमिटेडआव लांदां जानाय एसिस्टेन्ट मेनेजार आरो जुनियर मेनेजार मासिनि थाखाय आर'जलाइ नागिरनाय जादों एसिस्टेन्ट मेनेजार मासिनि अनजिमाया मोन 35 बेनिनो मोन 10 मासिया इलेक्ट्रिकेल आरो सिभिल खोलोबनि बिनायसानि थाखाय मोन 6 मासिया मेकानिकेल खोलोबनि बिनायसानि थाखाय मोन 4 मासिया ह्यूमेन रिसोर्स खोलोबनि बिनायसानि थाखाय मोन 3 मासिया इनफर्मेशन टेक्न'ल'जि खोलोबनि बिनायसानि थाखाय बिनायसाया थिखानाय खोलोबाव BE, BTEC एबा 3 बोसोरारि फराफारिनि डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन ह्यूमेन रिसोर्स खोलोबनि मासिनि बिथिङाव बिनायसाया MBA एबा PGDM थानाय जानो नांगोन दानबान्थानि हारा दानसेयाव 37,300 रांनिफ्राय 112,000 रांसिम लोगोसे 14,200 रांनि ग्रेड पे आरो गुबुन गुबुन बनासबो थाफागोन जुनियर मेनेजार मासिनि अनजिमाया मोन 31 बेनिनो मोन 12 मासिया इलेक्ट्रिकेल खोलोबनि बिनायसानि थाखाय मोन 9 मासिया सिभिल खोलोबनि बिनायसानि थाखाय मोन 6 मासिया मेकानिकेल खोलोबनि बिनायसानि थाखाय आरो मोन 2 मासिया इनफर्मेशन टेक्न'ल'जि आरो इन्सट्रुमेन्टेशन खोलोबनि बिनायसानि थाखाय बिनायसाया थिखानाय खोलोबाव इन्जिनियारिं डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन दान बान्थानि हारा दान्थियाव 25,000 रांनिफ्राय 92,000 रांसिम लोगोसे 12,100 रां ग्रेड पे आरो गुबुन गुबुन बनासबो थाफागोन गासैबो मासिनि बिथिङाव बिनायसानि बैसोआ 21 बोसोरनिफ्राय 38 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन आबुं खारिथि आरो आर'जलाइनि थाखाय वेबसाइटआ www.apgcl.org आर'जलाइनि जोबथा खालारा जुनियर मेनेजार मासिनि बिथिङाव 21 आगस्ट आरो एसिस्टेन्ट मेनेजार मासिनि बिथिङाव 23 आगस्ट पान्जाब नेशनेल बेंक मुंनि फसंथानाव लांदां जानाय मोन 545 लकेल बेंक अफिसार मासिनि थाखाय आर'जलाइ नागिरनाय जादों दानबान्थानि हारा दानसेयाव 48,480 रांनिफ्राय 85,920 रांसिम लोगोसे गुबुन गुबुन बनासबो थाफागोन बिनायसाया ग्रेजुवेट जानो नांगोन बिनायसानि बैसोआ 20 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन आबुं खारिथि आरो आर'जलाइनि थाखाय वेबसाइटआ pnb.bank.in आर'जलाइनि जोबथा खालारा 9 आगस्ट बेजों लोगोसे साख्रिनि रादाबाबो एसेनोसै बे आकाशवाणी गुवाहाटी मुवाबा हुदालाय दायो फोसावलादों आबादनि जोथोन आयदा दिनै बे आयदायाव जायख्लं बर'जों मोगा मोगि लानाय आयदाखौ फोसावनो लादों मोगा मोगिखौ लादों नगेन दैमारिया आबादनि जोथोन आयदायाव दिनै बे गिबि फोसावजागोन फैदोबदिब्ला खोनासंदिनि

0: बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु जों दिनै स्टुडिअ हांख्रायनानै लाबोदों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वर हालामनि बालाबारि गामिनि सासे गोख्रों राफोद आरो जाफुंसार फथल आबाद मावग्रा सासे आबादारि जों गिबियावनो नोंथांखौ जोंनि आफासिम बरायग्रोनाय जाबाय
1: आंनिफ्रायबो नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ बावर खालामनाय जाबाय
0: गोजोन्थों दायो नैबे समाव नोंथाङा गावनि सिनायथिखौ आरो थंखौ नोंथांनि खुगाजोंनो बुङोब्ला जोंनि खोनासंगिरि बिथांमोना थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनगोन
1: आंनि मुङा श्री जायखं बर' गामि बालाबारि पुलिस थाना गरेश्वर पस्ट अफिस बागदबा डिस्ट्रिक्टआ जाबाय तामुलपुर
0: गोजोननाय थाबाय नोंथाङा सासे नोंथांमोननि ओनसोलाव राफोद आबादारि महरै मुं दङ गिबियावनो नोंथाङा बै फथल आबादखौ मावनो थाखाय सोरनिबाफ्राय थुलुंगा मोन्दोंमोन

0: जोङो हायाव गायोमोन दायो मानि थाखाय हायाव गायलिया आं बेनि थाखाय एसे फोरमायनानैसै बैसां सायाव गायोब्ला जोङो आबादारिफोरा एसे खामानि मावनो मोजां जायो मानो होनब्ला हाग्रा जायो नालाय बागान फट' बागान सिंफोराव हायावब्ला
1: औ
0: एसे थाब थाब फंबाय थानो गोनां जायो हाग्राया बोलो जायो नालाय आबादफोरनि थाखाय बेनिखायनो जोङो दायो सोलाय पद्धतिफोरखौ सोलायलांबाय सोलायना बैसां सायाव मावनाय जाबाय
1: बे बैसांखौ माबायदि लुयो नोंथांमोना औवानि बा
0: जोङो दायो औवाखौ औवानि बनायो बिघा हायाव नांगौ औवा मथामथि 200-300 दालसो औवा नांगौ जायो ओरैनो दायो आं 2 बिघा हा बैसां पथलखौ मावनाय जादों आरो
1: औवाजों लोगोसे जेंना माबोरै बोरै माबायदि बै बैसांखौ माबायदि माने रोखोमजों एबा राजों नोंथांमोना लुयो
0: दायो जोङो औवाखौ गिबियाव खुन्थाखौ बनायबाय नालाय बेनिफ्राय माल्ला औवानो माल्ला होयो माल्ला होनानै बाजाराव प्लास्टिक दिरुं रसि मोनो बायदिसिना रसि मोनो मोजां मोजां बेदियो सांखौ बनायनाय जायो बैसांखौ
1: दा बे सायाव ओमफ्राय
0: बे सायाव पटल दंफाङा मानलायना थायगोन आरो बैसां होयोब्ला जोङो पटल आबादखौ मुलि होनो मोजां जायो बिथाइफोरखौ खानो मोजां जायो बिलाइफोरा अभार गोबां जायोबा बिलाइफोरखौ खानानै होनो गोनां जायो फाथलायो मानिया फिथाइ थायनायाव मोजां जायो बिफांफोराबो सेहेराया मोजां जायो
1: बांद्राय बिलाइ थायोब्ला बे दंफाङाव माबाफोर असुबिदा जायो नामा
0: जायो मानो होनब्ला एम्फौफोरा आक्रमण खालामनो चान्स मोनो बिलाइ सिंफोराव थानानै
1: नोंथाङा दा हारसिंनो 2 बिघा हायाव पटल मावगासिनो दङ बेनिफ्राय नोंथाङा बुंदो गायजेननायनिफ्राय फिथाइ थायनाय एबा थायबाय थानाय फानबाय थानाय समसिम बै समावहाय दंफांनि रैखाथिनि थाखाय मा मा जेनेबा एम्फौफोरा हमोब्ला मा मा मुलि होनाय जायो
0: एम्फौआथ' गोबां बिदिनि एम्फौ दङ
1: जेरैबायदि
0: जेरैबायदि लाथाथरनि एम्फौ दं मेवा एम्फौ दं बेरे बेरेबायदि एम्फौ दं फिथाइफोरखौ दंफांफ्रा बिफां बिलाइफोरखौ जाग्रा बेफोरनि मुलि दायो मुलिफोराबो खामानिलिया किसुमान जाय एम्फौनि मुलि बियो मोनफा मोनफा जालांजोब्बाय आरो
1: बेनि मोननैसो मुलिनि मुं बुङोब्ला खोनासंगिरिफोरा मोजां मोनगोन
0: मुलिखौ आं दायो मेवानि थाखाय इका मुलि होयो इका इनोभा बेनिफ्राय बेरे मुलिनि थाखाय सुपार किलार 25 आरो एम्फौ गोथां लाथा धरननि एम्फौनि थाखाय बिलाइ जाग्रानि थाखाय गलाब बेखौ होनाय जायो आरो फुनजा धरननि मुलि आरो
1: बेफोर मुलिखौ माबायदि बेसेबां बेसेबां दैजों बेसेबां जखानि मिलायनानैहाय स्प्रे खालामनाय जायो
0: गिबियाव मेवानि माबा मुलिखौ 15 ग्राम होनाय जायो 15 बा 10
1: बेसेबां दैयाव
0: 16 लिटार दैयाव बेथिं आरो सुपार किलारखौ 16 लिटार दैयाव 30 ml बेथिं आरो गलाब बा बै फुनजा धरननि मुलिखौ 10-15 ग्राम होनाय जायो आरो
1: मोजांनि बाथ्रा दायो नोंथाङा बुंदो पटल दंफांनि थाखाय बिनि जा सेहेरा बिनि जा माने मानबायनो हानायनि बोलो बेनि थाखाय माने मा मा हासार एबा मुलिफोर बाहायनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे बुङोब्ला मोजां जायो
0: आङो दायो पटल आबादखौ गिबिनिफ्रायनो हासारखौ गोबोरखिखौ मोसौ दङ नायोब्ला आंनि न'आव मोसौ 6-7 दङ बेनि गोबोरखौ थुब्रायनानै मथामथि 2 बिघा हायाव आं मथे 5 कुइन्टेलसो गोबोरखिखौ फेसावना दोनो आरो लांनानै सुपार 1 कुइन्टेल DAP 50 kg इउरिया 10 kg आरो पटास 5 kgसो होनानै मिक्स खालामनानै सेवना सानथामसो दोनो दोननानै बेनिफ्राय एसे सांस्रयां जाबा बिसोरखौ रिं खालामनानै फबनानै दोननाय जायो आरो बिफां गुदियाव एसे डिस्टेन्स मथामथि 1 फुटसो गोजान आरो गुरायनिफ्राय बिफां गुदिनिफ्राय नङाबा बिफां गुदिया लागि लाबोबा बे हासारफोरा बिफांखौ थंख'
1: खालामो
0: सानस'हैनाय लोगो लोगोनो बेयो हासारखौ बोनानै फिथाइबो फैगोन थायलांनायनि बेबस्था जालांबाय आरो लोगोसे भिटामिन होनाय जायो बिफांनि सेहेराखौ बनायनो थाखाय ट्रेसेल भिटामिन आरो जोलुवा बिफोरखौ बेफोरखौ बाहायनाय जायो
1: बेनिफ्राय बिबार एबा फिथाइनि सायाव गाग्लोबग्रा आरो गुबुन माबाफोर बेमार एबा एम्फौ एनलाफोर दङ नामा
0: जोंथ' गिबियावनो आं बुंखानाय जाबाय एम्फौ एनलानि थाखाय जोङो गिबियावनो मा मा मुलि बाहायनाय जादों बेनो आरो मुलि सम सम बोथोर गाज्रि जायोब्ला पटलनि बेमार फैयो आरो
1: मा बेमार बियो जोंनिबा
0: बिफाङा रानलाङो आरो ब्लाइट धरननि जालाङो आरो नखा हायोब्ला बांद्राय अखाफोर हायोब्ला दख्ला दख्ला बेरखम सेवलाङो आरो
1: बेनि सायाव माबायदि राहा लागोन
0: बेखिनाखो जायखिनाखो माबानाय जादो नांनाय जायो आरो बेखिनाखो हाख'नानै गारनाय जायो आरो बिफांखोनो गुबुनाव जाहाथे थांनो हाया बारदेरनो
1: हायो
0: सन्देरनो हायो बायदि हानानै गोजान जायगायाव गारिनाय जायो आरो
1: थिग दङ नाय नोंथाङा पटल आबादनि थाखाय लाग्रोनो गोनां जाफोर जोथोन एबा राहा बेनि सायाव गोबां खोथाखौनो बुंबाय गायजेननायनिफ्राय बिबार बारनाय एबा थायनाय समसिम बेवहाय मा मा मुलै हासार माबायदि बोरै बोरै बाहायनांगौ

0: नङाबा दायो बेनि फिथाइ एबा बेनि फसलनि फाननानै मोननाय बेनि सायाव सावरायनोसै. नोंथाङा दुइ बिघा हायाव जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों मावनानै बेसेबां बेसेबां फथल फिथाइ मोननो हादों एबा खानो हादों?
1: आङो गिबियाव एसे खम जायो नालाय थायहांनायाव फिथाइनि बिबाङा.
0: गिबि दाम
1: गिबि थायहांनायाव बिफाङाबो एसे खम जायो नालाय मानला लांबाय थागोन नालाय. बेयाव गिबियाव आङो दुइ बिघा हायाव से कुन्टेल फानग्रोनो मोन्दों. से कुन्टेलनिफ्राय दायो नैबे समालागै जि कुन्टेल जिसे कुन्टेल बे रखम फानो
0: आरो नै बिघा हाजों. बेनिफ्राय नोंथाङा नै बिघा हायाव जिनिफ्राय जिसे कुन्टेल पटल फानो होन्दों नङा होमबा बेसेबां बेसेबां साननि उनाव बेखौ खानानै बेबायदि मोननाय जायो दा थायफुनाय समाव?
1: आङो बेखौनो बुङोदि सप्तायाव खेबनै फानो.
0: सप्ताह खेबनै फानो?
1: सप्तायाव खेबनै फानो आरो.
0: हागासे अब्ला जि
1: आरो मालाबा बेपारिफोर थाङो बागानाव बिसोरनोबो हरनाय जायो आरो
0: गेजेर गेजेर
1: गेजेर गेजेर. ओरैनो बेपारिफोर थांलायनाय थाङो नालाय बेफोराव हरनाय जायो आरो.
0: सप्तायाव खेबनै फाननाय जायोब्ला ओरैनो थुलमुल बेसेबांसो नै बिघा हायाव पटल फाननाय जायो?
1: नै बिघा हायाव बे जिसे कुन्टेल
0: सप्तासेयाव खेबनै फानोब्ला
1: खेबनैदो बेसे जायो आरो.
0: माने सप्तासेयाव खेबनै खायोब्ला बेसेबांसो कुन्टेल फाननाय जायो?
1: सप्तासेयाव सोननैदों सल्ल' सुन्ट्रन
0: नोंथाङा बेबायदि दान बेसे पटलखौ फाननो हायो?
1: जोबोद मोजां सोंथि बियो. जोङो पटलखौ खेबसे गायब्ला बा बोसोरहालागै ब्रै बोसोर जेबो जायाब्ला बेमार सेमार नाङाब्ला थांनानै थायो आरो. आङो गोबां खेति मावनायनि मादाव दायो सबसे मोजां आबादखौ मोनबाय पटल आबाद. बेनो आरो
0: खेबसे मावब्ला
1: बा बोसोरसिम फिथाइखौ मोनबाय थायो.
0: जेनेबा गेजेर गेजेर गेप थायो ना?
1: गेप थायो.
0: माबायदि
1: जोङो बेखौ बैसाग माहनिफ्राय फाननानै आघोन मास आघोन पुष ओरै थान्दा दिन जायोबा एसे फिथाइनि बिबाङा देरनाया खम जायो, फिथाइ फैनाया खम जायो. हाइस फानो जों आघोन मांखालागै, बैसागु मांखानिफ्राय आघोन मांखालागै फानो आरो रेगुलार.
0: अब्ला आघोननिफ्राय ओरै बैसागोसिम थाथ'लायबाय
1: एसे एसेबां नङा आरो, खम जाहैबाय आरो थान्दायाव फिथाइया देरा.
0: थांब्ला बे बा बोसोराव नोंथाङा नांगौखिना जायफोर जोथोन राहा मुलि सारनाय बायदिसिनाफोरखौ खालामबाय थानो गोनां जायो नङा
1: होमबा?
0: सम
1: सम सप्तायाव आं मुलिखौ खेबनै होनाय जायो आरो स्नि सानाव.
0: दायो जोङो हाथाइनि बेलायाव फैनोसै. हाथाइयावहाय नोंथाङा मा मा समाव बे पटलनि बेसेनखौ बेसेबांसो मोनो, मा समाव खमियो, मा समाव बारियो, बेनि सायाव एसे खोनासंगिरि बिथांमोननो फोरमायनानै होदो.
1: पटलनि बेसेना गिबि ओंखारबानथाय 400-300 बेफोरबायदि जायो आरो.
0: पाल्लासेयाव
1: बा केजि पाल्लासेयाव आरो कुन्टेल मोनो 5,000-6,000 खाता 8,000 लागि थाङो गिबि दिहुनजेननो हायोबा.
0: अब्ला नोंथाङा गिबि बेबायदि समावहाय फानोब्ला जि कुन्टेल पटलाव नोंथाङा बेसेबांसो फुलमुल भाबि नोंथाङा रां मोननो हायो?
1: गिबि फानजेननायनि मथे फाननो मोनबाय थायोब्ला दामखौ मोनबाय थायोब्लाथ' गोबां रां मोनो. दायो एसे मार्केटनि बेसेना खमायबाय नालाय.
0: मा समाव खमियो जोंनियाव?
1: बाजाराव जाय माला बांद्राय ओंखारो सब साइडनिफ्राय फैयो नालाय बाजाराव, होमबानिया बेसेनाफ्रा खमिबोयो आरो. दा जुन जुलाइ आगस्ट बेफोरहालागै दामा एसे खमायगोन आरो आगस्ट अक्ट'बरफोरनिफ्राय एसे दावखोफिनगोन आरो दामफोरा. गोबां साइडनिफ्राय बायदिसिना मैगंफोरा फायो नालाय, पटलफोराबो फायो. गासै जेसेबां सुबुंफोरा आबाद मावो जमा बाजाराव जाफायो आरो गासैबोलाबो. सोरबा पाइकारिफोरनो बागाननिफ्राय हरो, बिदि जानानै बाजारावबो जमा जाफायो आरो. जाफायनायनि मानोना बेसेना खम जालाङो.
0: अब्ला नोंथाङा से मासाव जेब्ला बेसेना थि रोखोमै थायो अब्ला बे समाव खमैबो नोंथाङा बेसेबांसो रोजा रां खामायनो हायो?
1: से मासाव आङो दायो हिसाब खालामना मोननाय मथे 70-60 रोजा
0: रां गोरलैनो
1: फैयो आरो.
0: बे जोबोद मोजांनि बाथ्रा. थारैनो खोनासंगिरि बिथांमोना नोंथांनि बे थुलुंगा होनाय बाथ्राखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जानांगौ. दायो जोङो नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनि, नोंथाङा बे पटल फिथाइफोरखौहाय माबायदि राहाजों फाननाय जायो?
1: बेखौ पटल आबादखौ जोङो बाजाराव लाबो नालाय, मालाबा बागानाव बेपारिफोरा थाङाब्ला जोङो मार्केट लानानै बाजाराव बेपारिफोरनो होनाय जायो.
0: बेपारिफोरनो
1: बाजाराव जिरायनाय दैलिक मार्केट जिरायग्राफोरनो
0: पाइकारिफोरनो
1: होनाय जायो आरो.
0: एसेबां बुरजा फिथाइफोरखौथ' नोंथाङा बेनिफ्राय जायगायावबो गोबां बेफारिफोर
1: थाङो, जायगानिफ्राय बागाननिफ्रायनो बिथांमोनानो बेफारिखौनो खाना लाङो, सुनानै हरनांगौ गोनां जायो जोङो.
0: जोबोद गोजोन्थाव बाथ्रा. दायो नोंथांनि बे थुलुंगानाय आबाद जा पटल मावबाय थादों बेखौ मावनो मोजां मोननाय खोथाखौ जों खोनानानै मोजां मोनबाय.

रैसुमै खबरनि जोबथारनि दाना खोनासंदो सुलेखा बसुमतारी आरो लैथोमा बसुमतारीनि गारांगावनि बे जावजा गोदान मेथाइखौ मेथाइनि बाथ्रा चक्रधर ब्रह्मनि।

बे मेथाइजों लोगोसे दिनैनि रैसुमैखमनि आइडियाबो एसेनोसै। बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु समजानानै फैनाय लोगो लोगो दुलाराय खोनासंग्राफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ हरफिननानै दिनैनि बर' आफादखौ इसोरनो थुंगिहोनाय जाबाय। गोजोन्थों।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। আমাৰ পাছৰ অনুষ্ঠানৰ ঘোষণা হিন্দীত শুনিবলৈ পাব।
1: হম আকাশবাণী গুৱাহাটীকে মহাবাহু চেনেল সে বোল ৰহে হ্যাঁ। হম আপকে সামনে আজ লেকৰ আয়ে হ্যাঁ হিন্দী টক কা কাৰ্যক্ৰম। আজ কে কাৰ্যক্ৰম মে হম বাত কৰেংগে মিজোৰাম কে বাৰে মে। মিজোৰাম পৰ্বতীয় প্ৰদেশ হে। ফৰৱৰী 1987 মে ভাৰত কা 23ৱা ৰাজ বনা। বৰ্ষ 1972 মে কেন্দ্ৰ শাসিত প্ৰদেশ বননে সে পহলে তক য়ে অসম কা এক জিলা থা। 1891 में ब्रिटिश कब्जे में जाने के बाद कुछ वर्षों तक उत्तर का लुसियाई पर्वतीय क्षेत्र असम के और आधा दक्षिणी भाग बंगाल के अधीन रहा। 1898 में दोनों को मिलाकर एक जिला बना दिया गया जिसका नाम पड़ा लुसाई हिल्स जिला और यह असम के मुख्य आयुक्त के प्रशासन में आ गया। 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने पर मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बन गया। भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच वर्ष 1986 में हुए ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप वर्ष 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। पूर्व और दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश के बीच स्थित होने के कारण भारत के पूर्वोत्तर कोने में मिजोरम सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है तथा इस क्षेत्र में प्राकृतिक की विभिन्न छटाएं देखने को मिलती है। यह क्षेत्र विभिन्न प्रजातियों के प्राणियों तथा वनस्पतियों से संपन्न है। 19वीं शताब्दी में यहाँ ब्रिटिश मिशनरियों का प्रभाव फैल गया और वर्तमान में अधिकांश मिजो लोग ईसाई धर्म को ही मानते हैं। मिजो भाषा को अपनी कोई लिपि नहीं है। मिशनरियों ने मिजो भाषा और औपचारिक शिक्षा के लिए रोमन लिपि को अपनाया। अगर कृषि की बात करें तो राज्य की आधी से अधिक आबादी कृषि तथा संबंध गतिविधियों में लगी है। कृषि का मुख्य प्रणाली झूम या स्थानांतरित कृषि है। कृषि भूमि कुल क्षेत्र का 21% धान मौसमी फसलों वाला क्षेत्र है। लगभग 63% पर झूम खेती होती है। विनाशक और अनुत्पादक झूम खेती को बदलने के लिए राज्य सरकार ने नई भूमि उपयोग नीति लागू की है जो सभी जिलों को कवर करती है। 11वीं योजना के आरंभ में झूम खेती क्षेत्र में कमी आई और 2019-20 के दौरान यह 18,510 हेक्टेयर हो गई। झूम खेती क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण कमी खासतौर से नई भूमि उपयोग नीति, नारियल तेल विकास कार्यक्रम, गन्ना खेती कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और वारानी क्षेत्र विकास को अमल में लाए जाने के कारण आई है। अगर बागवानी की बात करें, अनुमानित 21 लाख हेक्टेयर भूमि में से 6 लाख हेक्टेयर भूमि बागवानी के लिए उपलब्ध है। बागवानी की मुख्य फसलों में मंदारिन, संतरा, केला, कृष्णाफल, अंगूर, हटकोरा, अनानास और पपीता आदि शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ एंथुरियम, बार्ड ऑफ पैराडाइज, आर्किड, गुलदाउदी, गुलाब तथा अन्य कई मौसमी फूलों की खेती होती है। मसालों में अदरक, हल्दी, काली मिर्च और वर्ट्स आई चिली भी लगाई जाती है। इजराइल की मेसर्स अर्गोस के साथ चिती में बहुउद्देशीय पैकिंग हाउस स्थापित किया गया है। पुष्पोत्पादन मिजोरम में फलता फूलता पेशा है। प्रौद्योगिकी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 2002 में एंथुरियम की खेती शुरू की गई। आज मिजोरम एंथुरियम कठफूल का देश के अन्य राज्यों और विदेशों में निर्यात हो रहा है। अगर उद्योग की बात करें, राज्य की स्थलाकृति तथा भौगोलिक स्थिति और कम विकसित ढांचा तथा परिवहन समस्याओं के कारण यहां पर औद्योगिक विकास धीमी है। हालांकि म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा व्यापार खुलने के और भारत सरकार की लुक ईस्ट पॉलिसी तथा राज्य में शांति के चलते भविष्य के औद्योगिकरण की गति पकड़ रही है। राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में लघु उद्योग का विशेष स्थान है, जहां 8,773 SME SSII इकाइयां स्वीकृत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को संवर्धन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार 35 प्रशिक्षकों के साथ एक क्षेत्रीय औद्योगिक विकास निगम और 2 सामान्य सुविधा केंद्र चला रही है। चाय की वैज्ञानिक तरीके से खेती आरम्भ की गई है। निर्यातोमुखी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल प्रशिक्षण तथा डिजाइन

0: डिजाइन केंद्र और रत्नों की कटाई तथा पॉलिश करने की इकाइयां लगाने की योजना है। कुटीर उद्योगों में हथकरघा तथा हस्तशिल्प को उच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा ये दोनों क्षेत्र मिजोरम तथा इसके पड़ोसी राज्य मेघालय तथा नागालैंड में उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए फल फूल रहा है। परिवहन की बात करें तो सर के राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 8,801 किलोमीटर है और सड़क घनत्व 41.76 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। यह 6 राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य से गुजरते हैं। NH-34 आइजॉल को सिलचर के जरिए बाकी देश से जोड़ता है। आइजॉल अब शिलोंग और गुवाहाटी से भी जुड़ा है। रेलवे असम सीमा के पास मिजोरम के बैराबी में ब्रॉड गेज रेल लिंक स्थापित की गई है। अगर पर्यटन की बात करें तो मिजोरम प्रचुर वनस्पतिक दृश्यावली और मन भावन जलवायु वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से लगभग 3,715 फुट की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय नगर आइजॉल मिजोरम का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। म्यांमार की सीमा के निकट चंपई एक सुंदर पर्यटन स्थल है। ताम दिल एक प्राकृतिक झील है। बांतांग और तुरी हियाओ जलप्रपात प्रमुख आकर्षण है। फांग पुई इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। यह 2,157 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पर्वतारोहियों के लिए बड़ा आकर्षण है। आइजॉल से 30 किलोमीटर की दूरी पर रेइक चोटी भी है। पुराने मिजो गांव के तर्ज पर फाकाइन में एक गांव स्थापित किया गया है। हाईफांग तलांग और कियालसुक तलांग प्रमुख पर्यटन स्थल आकर्षण है। पर्यटन विभाग ने सभी बड़े कस्बों में पर्यटन आवास गृह का निर्माण किया है। जोबॉक के निकट जिला पार्क में अल्पाइन पिकनिक हट तथा बेरो तिलिंग में मनोरंजन केंद्र भी बनाए गए हैं। अगर त्यौहार की बात करें तो मूलतः किसान हैं, अतः उनकी तमाम गतिविधियां तथा त्यौहार भी झूम खेती से ही जुड़ी है। त्यौहार के लिए मिजो शब्द कूट है। मिजो लोगों के विभिन्न त्यौहारों में से अब मुख्य त्यौहार चपरचरकुट, मिमकुट और थालफवांगकुट और एंथोरियम त्यौहार मनाए जाते हैं। अगर वन की बात करें तो मिजोरम देश में सबसे अधिक घने वन क्षेत्रों में से एक है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 दर्शाती है कि राज्य का लगभग 7,789 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो 34.48% भौगोलिक क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। कटिबंधीय अर्थ सदाबहार, कटिबंधीय नम पर्णपाती, उप कटिबंधीय बृहदपर्णी, पर्वतीय एवं उप कटिबंधीय चीर वृक्ष आमतौर पर पाए जाते हैं। यहाँ के 57% क्षेत्र में बांस की बहुतायी होती है। राज्य में बांस की 35 किस्में पाई जाती हैं जिनमें 77% मेलोकॉन बेस्फीरा किस्म के बांस हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।
1: শ্রোতাসকল, এতিয়া আগবঢ়াইছো অনুপ জলোতাৰ কণ্ঠৰ এটি ভজন।

0: ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে অসমীয়া শ্ৰব্য সফুৰাৰ গীতৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া সমাচাৰ সন্ধিয়া দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
3: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्र गान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
2: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
4: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
2: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
6: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
7: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित

0: कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की है, उन पर लागू नहीं होगा।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
3: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा, जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायिन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी

0: संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33,13,00,000 घरेलू LPG उपभोक्ता थे। इनमें से 10,58,00,000 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू LPG की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ISS ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। ISS अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों